सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम अगम अपार सब त्यावै सब त्यावै तुध जी अर सच्चे सिर जनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहार हरे आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी।

नीच कर्मा सरन परे की राखो शर्मा जब तब संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा सरन परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार अमरे दुष्ट सबै तुम गावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवार सेवक सिख सबाय करतार मोर अच्छा निज करदै करे है सब बैरन को आसंगरे है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवरना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हद मुझे उबरे मरण काल का त्रास निबरे उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजु करे हो रक्षा राख लियो मैं राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विशन प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझेओ हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सफर कृपा दिष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्न घट घट गे बट बट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन शिष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब हीते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्वेकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कृपा हन अनुमानत महामूड कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भव आप अपनी बद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखा ना जाहे पसारा केबिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुप्पा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव
रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस्तु जितव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार त्य है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नेहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा शबाए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्त दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग गेत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी, सर्व ठावर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरण सुबराता, केल विघ सकल देहे को हरता, दुष्ट दुखियन को शय करता, श्रीअस्तु जप पए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांचत फल पावे सोई, दुख ना तसे ब्यापत कोई अड़ल, सुने गुंग जो यहे सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भाव निकटना दन्नर के रहा, ओ जो जाकी एक बार चापई को कह, चापई संबत सत्रह सह सपने जय, अर्ध सहस मंतीन कह जय, भाद्रव सुधी अष्टमी रबवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रो बखियाने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे, चार सौ पांच

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए। कीर्तन करते हैं बुला दे बाबे बख्शन धन धन साहब श्री गुरु रामदास महाराज के प्रकाश दिहाड़े आने वाले शुक्रवार दिन आ रहे हैं। विशेष दीवान सजने हैं हर साल की तरह अमृत वेले विशेष दीवान हरिमंदर साहब की तरह प्रकाश होंगे जिमें कि चार बजे तक सिमरन संगत वालों होंगे चार तो पाँच कीर्तन रूप सिमरन होंगे पाँच बजे सभा शुरू होगी पौने छे महाराज सवारी आवेगी फुलों की वर्खा हरिमंदर साहब तस्वीर पढ़े जाएंगे आप जी ने बद हाजरी भरनी है जी। आम पासी पे रविंदर सिंह जी लड़ीवार कथन आप जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार से सबन करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

संग ना जाई राम। मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम। ओमे ममता माया संग ना जाई राम। मात पित माता पित भाई सुत चुतराई संग ना संपै नारे। सायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारे। आद पुरख एक चलत दिखाया

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुर ए नम जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव ए नम है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माह मिटावो सिमरो जा संपर एक नाम जपते अगंते अनेक वेद प्राण सिमरत सोद आख्यर किन्ने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे काखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रुहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै।

गए सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध गए संग, सर्वदान नानक हर रंग। प्रभु कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध, प्रभु कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कह सिमरन जब तब पूजा, प्रभु कह सिमरन विसै दूजा, प्रभु कह सिमरन तीर्थे सनानी, प्रभु कह सिमरन दरगह मानी। प्रभु कह सिमरन होए सो भला, प्रभु कह सिमरन सुफल फला, से सिमर जिने आप सिमराय नानक ता कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कह सिमरन उदरै मूचा, प्रभु कह सिमरन त्रिसना बुझै, प्रभु कह सिमरन सब कह सुजै, प्रभु कह सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कह सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु कह सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माह समाए। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु कौ सिमरै से तनवंते, प्रभु कौ सिमरै से पतवंते, प्रभु कौ सिमरै से जन परवान, प्रभु कौ सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु कौ सिमरै से बेमहताजे, प्रभु कौ सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु कौ सिमरै से सुखवासी, प्रभु कौ सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जने आव दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभु कौ सिमरै से पार उपकारी, प्रभु कौ सिमरै तन सद बिहारी, प्रभु कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरै तन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरै तन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरै तन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरै तन अंध कनेरे, प्रभु कौ सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कह सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कह सिमरन कबह न झूरे, प्रभु कह सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कह सिमरन सहज समानी, प्रभु कह सिमरन नेह चल आसन, प्रभु कह सिमरन कमल बिंगासन, प्रभु कह सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमर

सिमरन नीचा हुकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकार हर सिमरन मह आवरिंकार। कर कृपा निसया बुझाया नान गुरमुख हर सिमरन तन पाया सलोक। दीन दर्द दुख पंजना कड़ कड़ नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ अष्टपदी

ते रह चले जय मुस्कल होवे तो भारी हर को नाम खिन माही उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरु नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल सृहित को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परे हर का नाम जपत नि तरे अनक माया रंग तेख ना बुझावे हर का नाम जपत आगावे जिह मार्ग इह जाते अकेला तह हर नाम संग हो तु सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइए नान गुरुमुख परमगत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनक बिघन जह आय सिंघारे हर का नाम तत्काले उधारे अनक जौन जन्मे मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हाँ मेला मल कब होना तो वह हर का नाम कोड पाव खोवे को

हरि अमृत बरखे। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत निरात, हर हर औखद साध कुमात। हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नौ दान। मन तन रंग रते रंग एक कह, नानक जन कै बिरत विवेकै। हर का नाम जन कौ मुगत जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिवत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जबत कव पर न भंग।

हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्ध वसे संत प्रताप दुर्त सब नसे।

विकराल मिथ्या, काम क्रोध विकराल मिथ्या, रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या, रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या, त्रोह मोह अभिमान मिथ्या, आपसी ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण।

प्रसाद गुरुदेव अस्तपदी देह प्रसाद शक्ति ही अमृत खाए तिस ठाकुर कह राख मन माहे देह प्रसाद सुगंधन तन लावे तिस कव सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ध्याय सदा मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमरह तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत प्रलुभावे जेह प्रसाद सुख सेज सोई जे मन आठ पहर ताका जास गावी जय जेह प्रसाद

बेदयानक परकार अष्टपति कई कोट होए पजारी कई कोड चार बिहारी कई कोड पति सुवासी कई कोड बन प्रमे उदासी कई कोड भेद के स्रोते कई कोड तपीसर होते

परमिया नाना रूप ज्यो सुवांगी दिखावे ज्यो प्रभ भावे तिवे नचावे ज्यो तिह भावे सोई होए नानक दूजा वर न कोय कबहु साध संग तिह पावे उसे स्थान ते बहर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उसे स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग

और अवतार अष्टपदी संत के दुखन हार जा कड़े संत के दुखन जमते नहीं छुट्टे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन सोबा तिहीन संत के हते कौ रखे न कोय संत के दुखन थान प्रहत होए संत कृपाल कृपा दे करे नानक संत संग निंदक पीर तारे संत के दुखन ते बहु पावे संतन के दुखन काग ज्यों लवे संतन के दुखन सर्प ज्योन पाए संत के दुखन त्रिगत ज्योन किरमाए संतन के दुखन तिस नामे जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावे ताए पीहिं गत पाहे संत का निंदक महा

सुखी एक पछाने तुद की ओ सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्य नानक तिन्ह निरंजन जाने गुर प्रसाद अपने आप सुजे तसकी जानो त्रिसना बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्ब रोग ते ओह हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बुख्यान गृहत मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिय जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिस कहो हर प्रभु मन चेत आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सा तैसा दृष्टा अपने कार्य में आप समाय सोदत सोदत सोदत सीजा गुर प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब कह मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह कह जन्मे नह कह सिमरे आपन चलते आप ही करे आमन जामन दृष्टा दृष्टा क्या कारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आप अनक युगत राज थाप उथाप अविनाशी नाही।

रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म के आप नहीं काश भरम सहस सियाण पलया न जाइये नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखित पनीत पर सत चरण गत निर्मर नीत भेटत संग राम गुर रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आतुम पतियाने ने

पूर्ण विवेक काहू बोल न पहु चित प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ता की कीमत कहने न पाई अनक भगत बंदन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सत बनिहारी सतगुरिया प्रे नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।

तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो धरे तब कवन निडर कवन कद डरे। अपन चलते आप करने हर नानक ठा गुरु कमे पार। अविनाशी सुखे अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन।

जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट है कौन बंधन बाधे अपने आप ही जर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जाओ।

निरंजन होए जेको मन जाने पर कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पात स्यों प्रगट जाए मन मगन चले पंथ मन धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।

कार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलबट त्याह कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख नंदक सिर कर

अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहेब ऊंचा था हूँ ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हूँ एवड ऊंचा हो वह कोय तिस ऊंचे गौ जाने।

तरेना मित्रे न परमंग न पितर न करमंग न गाय अजन्मंग अजाय न चित्रे न मित्र परे है पवित्राय प्रतिश अधिश अदृश अग्रस भगवती शांत त्व प्रसाद कथते कि आ शिज देसा के आ पिज बेसे के आ गंज करम के आ भंज भरम के आ पिज लोक के आ दित सोक के अभूत वरण के विभूत करण के राजंग प्रभा के धर्मंग तुझा है के आ सोख भरण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव के आप अपेव है के चतरंग भीन के एक अधिन के रोजी रजा के रहीमे रेहाके के भाग ब्याबे के गैबुल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहन शाह के कारण करिंद के रोजी दहद है के राज करहीम के करमंग करीमे के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर मान्य के सर्वतर दान्य के सर्वतर गावना है के सर्वतर भावना है के सर्वतर देशा है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर राज है के सर्वतर साज है के सर्वतर दीन नायक के सर्वतर लीन नायक सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशा है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर भूख है के सर्वतर त्राणे के सर्वतर प्राणे के सर्वतर देशा है के सर्वतर भेषा है के सर्वतर मान है सदैव प्रधान है के सर्वतर जाप है के सर्वतर थाप है के सर्वतर पान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्र है के सर्वतर चंद्र है के सर्वंग कलीमे के परमंग महीमे के आकल अलामे के साहिब कलाम है के उसन वजू है तमाम रसू है मेसुल सलाम है सली खुद मदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल परस्त है बिलंदल मकान है जमीनल समान है तमीजल तमाम है रिजवल निधान है हरीफुल अजीम रजाक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभुत है प्रभुक्त प्रवाह है सुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्त पराज है सदा सर्व साज है समस्तल सलाम है सदैव कामे द्रभा स्वरूप अगाध है अनुप है उमंगाद रूपे ना स्वरूप अनंगी अनामे त्रभंगी त्रगामे त्रिवर्गम दर्भादे गंजे अगाते सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप शिज शूत के नृक प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुप है नृक सदा है विभुक्त प्रवाह है नृक स्वरूप प्रजुक्त अनुप है चाचरी शांत अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाध है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निचंत है सुनंत है अलख है दिख है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित है अजात है अजाद है चरबड़ छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रभंगी त्रगामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं सरीक है मितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजाय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर है जूर है मेसुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है कुशल चिराग है कामल करीम है के राज रहीम है के कर्म करीम के रोजी दहन के राज करीम है के रोजी दहन के राज करीम है करीमल कमाल के सुनल जमाल है गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरा सल्फिकन है कलंकंग प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम है रजायक रहीम है समस्तुल जबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रनास है बहसुल निवास है के सरबुल गमन है मैसुल रमन है तमामुल तमीज है समस्तुल अदीस है परंग परमीस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है मैसुल अपेख है जमीनुल जबा है मेकुल माह करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष के अजब स्वरूप के मित्तो विभूत है के मित्तो प्रसाह के आत्म प्रवाह के चलंग अनंग के मित्तो अभंग है मधुभार शंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव नास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अभंग उम अपार गति मित उदार जल थल अमंड दिस सपंड जल थल महन दिस व्यंतन भवना तीर्थर्थुरास आजान बाहु एक सदाह वंकाराध गथनी अनाद खलखंड ख्याल गुर प्रकाल कर कर प्रणाम चितचर नाम अंश जगात अजना बात अंश अंजगात अंधरंज बात अंटुट भंडार अंठट अपार अटीठ धर्म अतटीठ कर्म अनभरण आनंदाता महंतर बोल मना शांत त्व प्रसाद

cansada. नमस्कार गुरुदेव को, सत नाम जिस मंत्र सुनाया, भवजल विचों कड के मुक्त पदार्थ माहे समाया, जन्म मरण भौ कटिया, संसार रोग वियोग मिटाया। संसार इहो संसार है, जन्म मरण विच दुख सवाया, जम दंड सिरू ना उतरे, साकत दुर्जन जन्म गवाया, चरण गहे गुरुदेव के, चरण गहे गुरुदेव के, सत शब्द दे मुक्त कराया, नाम दान इसनान दृढ़, पाए भगत गुरपुरब कराया, हर की वडियाई हो आख ना साका, हो मूर्ख मुगदनी जान, जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी, सरनागत पिया।

0: संत साजन पै सरसे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

जप और सच जगार सच है भी सच नानक होशी भी सच एक ओ अंकार सतनाम करता भगत निर्भव निर्वय अकाल अजुनी सैब गुर प्रसाद जप और सच जगार सच है भी सच नानक होशी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सगल द्वार को शाड़क गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाजर गोविंदास तुहार कोई आवे संतो हर का जन संतो मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखला

जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर साहिब।

0: देहो मेरवाना, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेरवाना।
1: तुम करो
0: हम करो न जाने,
1: तुम सदा
0: सदा दयाला। तुम करो पला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सुखदाई वृक्ष विदाते, तुम राखो अपने वाला। तुम सुखदाई वृक्ष विदाते, तुम राखो अपने वाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। कहो नानक हम है हवाला, राख संतन के पाछे।
1: कहो नानक हम है हवाला, राख संतन के पाछे। फिर

गुरमुख हृदय शब्द न पे देव, हर नाम न लागा पाऊ, कूड़ कपट पाज लह जासी। मन

राम नाम योर मैं गयो जाके सम नहीं कोई जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमर

जात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओहकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिरंगत गुर ते अमरदास। रामदासें होय सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, करना उन दे आवे ताए। सब थाई होय सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई होय सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके। बोलो जी, पंजां प्यारियां, चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, शहीदां मरीदां, हठियां जपियां तपियां, सिद्ध कवाना जिन्हां नाम जपिया, वंड के छकिया, देख चराई तेग वाही, देख के अनडिठ कीता, सचारियां प्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चिरवाए, सिखी सदक के संस्वासां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी, पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके। बोलो जी, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। चेता वे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचै रहा है। देग तेग फतेह, बिरद की पैज रहे, पंथ की जी श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी, सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बंगे, जगो जोगा टल, धर्म का जयकार। बोलो जी, सिखां दा मन नीवां, मत उच्ची, मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन, सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु, नताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, ओ अरदास बेनती है आप जी दे अटल हुक्मां दी। तावीर करदिआं दर करदे सेवक माता मनजीत कौर जी, जेहा चिरी रिखिआ तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। देवां वाकां सार सेवकां नूं आप जी ने जितनी आरजा बख्शिश कीती सी, संसार की यात्रा संपूर्ण करदिआं होइआं परलोक प्याना कर गए सन, उहनां दी रूह दी शांति लई समूह परिवार वल्लों आप जी दे चरणां दा ओट आसरा लै के सहज पाठ आरंभ होए सन। आप दियां मेरा सदका संपूर्णतावां होईयां, उपरंत दीवान सजे, अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन होए, पढ़ी बाणी दा पहाओ, शीतलता विछड़ी आत्मा नूं परलोक विच सहाय करना, सदीवी काल वास्ते अपने चरणा कमलां च निवास बख्शना, पिछे सरबत परिवार साख संबंधियां बच्चियां दे सिर ते रहमतां भरियां रखना, भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना, परिवारां विच सुख शांतियां प्रदान करनियां, दर आईयां संगतां दीयां हाजरियां दर प्रवान करनियां, समूह परिवार दे सिर ते रहमतां पर हथ रखना, दरों करो नाम दान, सिखी सिदक भरोसे दी रात बख्श के कृतार्थ करना, कड़ा प्रसादी देख दर ते हाजर है प्रवान होए, प्रवान होया प्रसाद सरबत साध संगत च वरताउण दी आग्या होवे, पावन हुक्मनामे बख्श के संगतां नूं कृतार्थ करो, सही प्यारे मिलो, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ,
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह जो प्रभ को मिलो चह खोज शब्द में लेह राज करेगा खालसा अकी रह न कोए ख्वार हुई सब मिलेंगे बची शरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है